उसने सात आसमान ऊपर तले बनाए। ऐ देखने वाले, क्या तू खुदाए रहमान की आफरिनिश में कुछ नक्स देखता है? जरा आंख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है?

वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को नर्म किया, तो उसकी राहों में चलो फिरो और खुदा का दिया हुआ रिज्क खाओ, और तुमको उसी के पास कब्रों से निकल कर जाना है।

0: सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई।
1: فأصبحت كالصريم
0: तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती।
1: فتنادوا مصبحين
0: जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे।
1: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين
0: कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो।
1: فانطلقوا وهم يتخافتون
0: तो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे
1: अल्लाह يدخلنها اليوم عليكم مسكين
0: कि आज यहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए।
1: وغدوا على حرد قادرين
0: और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे गोया खेती पर कादिर हैं।
1: फलम

0: क्या इस कौल में उनके और भी शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ला सामने करें।
1: यौम युक्षफु अन साकिन व युदअउन इला सुजूद फला यस्तफीउन।
0: जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो वो सजदा न कर सकेंगे।
1: खाशियत

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمزه

Ladies and gentlemen, we are live now. बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This
2: is 92.6.
3: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। और आज हम बात कर रहे हैं कि मीडिया लिटरेसी क्या है, मीडिया किस तरह काम करता है और किस तरह मीडिया में हमें अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। और इसी पे बात कर रहे थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर आतिफ अशरफ साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि एक मीडिया स्टूडेंट को किस सेमेस्टर में किस टाइम मीडिया की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या 7वें सेमेस्टर के बाद, 8वें के बाद या फिर पहले?
4: देखिए बात यह है कि जिसका पैशन जर्नलिज्म है और जो करना चाहता है ना, वो इस डिग्री स्टार्ट करने से पहले भी स्टार्ट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको किसी इदारे से मुंसलिक होना ही लाजमी है। इसकी प्रैक्टिस आप आजकल के दौर में आराम से घर बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं।
3: सही।
4: सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बात करता हूँ स्टूडेंट से कि जर्नलिज्म बेसिकली क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास एक नोज फॉर न्यूज होनी चाहिए। आपके पास वो स्मेल आपको करनी आनी चाहिए कि खबर असल में है क्या
3: है क्या।
4: जब आपने खबर को स्मेल कर लिया कि ये आइडिया ये खबर हो सकती है, तो उसके बाद सेकंड स्किल है कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें, उसको एक्सप्लोर करें कि यार आइडिया जो मुझे आया कि ये वाकया कि इस आइडिया के ऊपर पहले कितना काम हुआ है और ये आइडिया है क्या, उसके बैक स्टोरी समझें। बैक स्टोरी होती है कि उसका कॉन्टेक्स्ट देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, जो जो उस आइडिया के साथ मुंसलिक स्टेक होल्डर्स हैं उनको स्टडी करें। ठीक है, जब आप स्टडी कर लेंगे देन आपका आइडिया रिफाइन होगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि अगला स्टेप है आपने न्यूज हंट स्टार्ट करना है। आप मुतलका रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के पास जाएं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स तलाश करें, उनके इंटरव्यूज करें, डिग आउट करें, फैक्ट्स को डिग आउट
3: करें,
4: एट्रीब्यूट करें, जो मैं फैक्ट्स देख रहा हूं कि वैलिड है, मुस्तनद है कि नहीं है। ये करने के बाद जब आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस आ जाएगा देन उसका अगला स्टेप है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपके पास राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, उसके लिए आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए।
3: उर्दू वो क्या
4: ठीक है, उर्दू कर लें, इंग्लिश कर लें, लेकिन मेनली मीडिया उर्दू में, लिहाजा उर्दू में मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है कि आप उर्दू के अंदर लिखना सीखें, जर्नलिस्टिक राइटिंग सीखें। उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो आप अखबार पढ़ें। जब आप रीड करेंगे आपको लिखना भी आ जाएगा। इस तरह जब आपने एंकर बनना है, टीवी के लिए बोलना है, तो आप एंकर्स को सुने, रिपोर्टर को सुने, आपको बोलना आ जाएगा। तो लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो अखबार के अंदर खबरें पड़ी लिखी हुई हैं, उन खबरों को पढ़ें, देखें स्ट्रक्चर क्या है, लीड क्या होती है, उसकी सुपर लीड क्या होती है, इंट्रो कैसे लिखा जाता है, 5W1H क्या होते हैं, एट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, खबर बैलेंस कैसे किया जाता है, खबर का जो नेट ग्राफ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो तमाम खबर का स्ट्रक्चर है वो आप आराम से अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं, यूट्यूब के ऊपर भी, एडेक्स के ऊपर भी डिफरेंट कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल जो जर्नलिज्म है वो यही है कि आपने जब आपके पास एक खबर स्मेल करते हैं देन रिसर्च स्किल्स आपकी अपनी है, आपको हेल्प आउट करेंगे बहुत सारे टूल्स, AI के टूल्स हैं जो आपको रिसर्च करने में हेल्प आउट करेंगे, डिजिटल मीडिया के बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको खबर के सोर्स तक लेके जाएंगे, डाटा जर्नलिज्म के टूल्स मौजूद हैं, ओपन सोर्स डाटा अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जब आप वो कर लेंगे तो रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ जब आपको लैंग्वेज की स्किल्स, ये ओवरनाइट नहीं आएंगे आपको ना, ये लिख लिख के आपको लिखने के बाद टाइपिंग भी सीखें उर्दू टाइपिंग, बिकॉज आजकल जर्नलिज्म सारी कंप्यूटर्स के ऊपर हो रही है। अगर आपको उर्दू टाइपिंग नहीं आती तो आप मिसफिट हैं। अगर आप रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं, एंकर हैं, उर्दू टाइपिंग इज अ मस्ट, बिकॉज जब आप टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करके ही आपका प्रॉम्प्टर बनेगा, टाइपिंग से ही पैकेज का स्क्रिप्ट बनेगा, टाइपिंग से ही आपका इंट्रो बनेगा, तो टाइपिंग के बगैर हैंड रिटन कोई चीज नहीं
3: है।
4: तो टाइपिंग थोड़ा सा सीखें, फिर उसके अलावा आप डिफरेंट टूल्स देखें, मसलन डिजाइनिंग के टूल्स हैं, एडिटिंग के टूल्स हैं, उनको देखें, कैमरा कैसे काम करता है, कैमरे के फ्रेम क्या होते हैं, कंपोजिशन क्या होती है, स्टोरी को रिकॉर्ड कैसे करना है, इंटरव्यू रिकॉर्ड कैसे करना है। ये मल्टीपल स्किल्स है जो कि आपको आराम से घर बैठ के सीख लेनी। जब आपके पास स्किल्स आ जाएंगी उसके बाद इफ यू हैव स्किल्स तो छोड़ दें, अगर आपको कोई मीडिया उस चांस नहीं भी देता, जस्ट स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, स्टार्ट योर फेसबुक पेज, स्टार्ट योर इंस्टाग्राम पेज, वहां पे कंटेंट डालते रहें। आपकी डिग्री मुकम्मल होने से पहले पहले, इवन कि मैं कहता हूँ आई कैन चैलेंज, अगर आप कंसिस्टेंट रहें, आई कैन चैलेंज विद इन 1 ईयर यू विल बी अर्निंग एज मच एज यू कुड हैव इमेजिंड। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एक फेस आपका रजिस्टर हो जाएगा ऑन सोशल मीडिया, आपके पेज, आपका यूट्यूब चैनल अगर वो रजिस्टर हो गया, उसकी शिनाख्त बन गई, देन आफ्टर वंस यू डिग्री कम्प्लीटेड आफ्टर 4 ईयर्स, तो 4 साल से पहले पहले आपको बहुत सारे क्लाइंट्स अप्रोच कर सकते हैं,
3: बिल्कुल
4: बहुत सारे चैनल्स अप्रोच कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्किल्स। और स्किल आपकी आपने खुद डिसाइड करनी है,
3: बिल्कुल
4: आपकी रिपोर्टिंग स्किल्स हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आपकी व्लॉगिंग की स्किल्स हैं, आपकी AI की स्किल्स हैं, आपकी कंटेंट क्रिएशन की स्किल्स हैं, इट्स ऑल अप टू यू। हमारे दौर में क्या था, हमें मौका चाहिए था, कोई मौका दे, चांस दे,
3: मौका दे।
4: आजकल मौके सामने बैठे हुए हैं,
3: मौके तो आप
4: वो स्किल चाहिए आपको, वो स्किल आपको चाहिए। चाहिए, स्किल है, उसको एग्जिबिट करें, स्टार्ट करें, अल्लाह मालिक आपको जो है ना वो बहुत सारा। और बात यह कि काम खुद सिखाएगा मुझे कैसे करना है।
3: yes.
4: सबसे बड़ा बॉस काम खुद होता है जो आप कर रहे होते हैं, और आप फिर नेटवर्किंग डेवलप करें, लाइक माइंडेड लोगों के पास बैठे सीखें, टीचर से सीखें, प्रोफेशनल से सीखें, पूछे मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो इस तरह आपको उनके साथ अटैच होंगे, नेटवर्किंग से बहुत आपका फायदा होगा, आपको मौके मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको काम दे सकते हैं। तो ये वो स्किल है, अगर आपके पास नियत है, स्किल है, अगर आप करना चाहते हैं तो जस्ट यू नीड अ मोबाइल फोन, यू नीड अ लैपटॉप एंड दैट्स इट। Okay. आपकी मुकम्मल प्रोडक्शन हाउस आपका मोबाइल फोन है।
3: मोबाइल
4: स्टार्ट इट एंड डू व्हाटएवर यू वांट इन जर्नलिज्म।
3: बहुत खूब, बहुत खूब। और अगर आपका टारगेट सेट है, आपने पैशनेट है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सितारों पे कमंद भी डाल सकते हैं, आप इकबाल के शाहीन भी बन सकते हैं, तो टारगेट आपका होना बहुत जरूरी है। चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक सामाईन, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। और आज के प्रोग्राम में हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर आतिफ अशरफ साहब ने ज्वाइन किया है, और उनसे हम बात कर रहे थे कि मीडिया चैनल के अंदर जो है वो किस तरह के मामलात होते हैं, टिकर्स किस तरह चलते हैं, क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग का सिस्टम क्या होता है। तो सर बताइएगा कि टिकर्स जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरह चलाए जाते हैं और क्या सिस्टम होता है उसका।
2: नहीं, जिस तरह होता है ना कि कोई क्राइम होता है थाने में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR होती है।
1: yes.
2: समझ लगे खबर का पहला स्टेज टिकर है।
1: hmm.
2: टिकर क्या होता है कि टिकर के लिए, चूंकि टीवी इज अ ऑडियो विजुअल मीडियम, वहां पे आपने खबर को प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रॉम्प्टर चाहिए, उसकी स्क्रिप्टिंग चाहिए, और उस कैमरा चाहिए, फिर उसकी ट्रांसमिशन चाहिए, एक एंकर चाहिए, एक पूरा एक आपको एक PCR चाहिए, तब जाके प्रॉम्प्टर के साथ फिर विजुअल्स भी चाहिए, एंकर की आवाज जाएगी, फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन टिकर क्या है, टिकर जस्ट एक टेक्स्ट है जो कि टीवी के बॉटम के ऊपर जैसे खबर आती है आप उसको टाइप करते हैं और वो टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। जस्ट एक इनके फौरन ना इसमें किसी एंकर की जरूरत है, ना ऑडियो की, ना वीडियो की, जस्ट एक टेक्स्ट के फॉर्म में आप खबर ब्रेक कर देते हैं। अक्सर आपको जब खबर ब्रेक होती है ना, सबसे पहले जब टिकर की फॉर्म में इसको टेक्स्ट आता
1: है,
2: उसके बाद वो टिकर अपडेट होते रहते हैं, उसके बाद फिर 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद या 3 मिनट बाद फिर वो टिकर एंकर के पास जाते हैं, एंकर रेडी होती है, टिकर को पढ़ती है या पढ़ता है, फिर एक पूरा सिस्टम के साथ फिर वो ब्रेक होती है, फिर वो ब्रेकिंग न्यूज चलती है, फिर वो साथ रिपोर्टर का भी पर चल रहा होता है, फिर वो उसके ऊपर मजीद डिटेल दे रहा होता है। तो टिकर बेसिकली वो टेक्स्ट की फॉर्म में एक ऐसा फॉर्मेट है जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के तौर के ऊपर टीवी की स्क्रीन के ऊपर आप डिस्प्ले करते हैं।
1: मीडिया की जो FIR है वो टिकर है आपके मुताबिक। और सर टेलीप्रॉम्प्टर की आपने बात की, टेलीप्रॉम्प्टर तो बहुत जरूरी होता है, वो कैब और आपकी बहुत ज्यादा चीजें जो है वो उसमें क्लियर कर देता है, समझ आ रही होती है, तो टेलीप्रॉम्प्टर क्या है ये भी बताना जरूरी है।
2: देखिए अक्सर हम छोटे थे ना, जब हम टीवी देखते थे, हमें बड़ा ताज्जुब होता था कि ये एंकर सारी खबरें जुबानी कैसे याद कर लेती है।
1: ऐसे ही
2: लेकिन बाद में अंदाजा हुआ यार ये कोई भी एंकर खबर जुबानी नहीं पढ़ता, बल्कि सामने लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है और जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है। कोई भी खबर जो एंकर आपको पढ़ता हुआ नजर आ रहा है या आ रही है, वो बेसिकली न्यूज रूम ने उस खबर को प्रॉपरली जर्नलिस्टिक राइटिंग में, स्क्रिप्ट को प्रॉपर जर्नलिस्टिक राइटिंग में लिखा हुआ है। जब वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है फिर उसको एडिट किया जाता है, कुछ डेस्क के ऊपर लोग कॉपी, जिनको कॉपी एडिटर्स बोलते हैं, रिपोर्टर खबर डालता है, फाइल करता है, देन कॉपी एडिटर्स उस खबर को एडिट करते हैं। एडिट से मुराद यह है कि इस तरह से एडिट करते हैं कि वो उसका स्क्रिप्ट कन्वर्सेशनल
1: हो जाता है,
2: हो जाए, ताकि एंकर को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज राइटिंग की लैंग्वेज डिफरेंट है और टीवी की लैंग्वेज डिफरेंट
1: है। यस,
2: जिस तरह उस तरह से लिखा जाता है स्क्रिप्ट प्रॉम्प्टर के लिए, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं कन्वर्सेशनल स्टाइल के अंदर, तो जब उस स्टाइल में स्क्रिप्ट एडिट होगा फिर वो एंकर के सामने आएगा, फिर एंकर स्क्रोल करेगा, एंकर अपनी स्पीड के मुताबिक उस टेक्स्ट को थ्रू प्रॉम्प्टर पढ़ेगा, और वो देख प्रॉम्प्टर मेरा होगा लेकिन प्रॉम्प्टर के पीछे कैमरा लगा होगा, तो इस तरह फील आएगी जैसे वो खुद कैमरे में देख के पढ़ा और जुबानी पढ़ रहा है। और इसके लिए एंकर की भी बड़ी उसको एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है कि वो लगे ना कि वो रीडिंग कर रहा है,
1: रीडिंग कर रहा है,
2: उसके लिए प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि वो जब पढ़े तो लगे इस तरह कि वो खुद नेचुरल वे में ऑर्गेनिकली पढ़ रहा है, ना कि ये रीड कर रहा है प्रॉम्प्टर से।
1: बिल्कुल रीड नहीं कर रहा, और डिलीवर जो कर रहा है वो अपने यानी कि उसने सोचा हुआ है और वो आपको सिखा रहा है। और न्यूज लेते किस तरह है, क्योंकि हमने चलाने की भी बात कर ली, हमने FIR भी दे दी न्यूज की, न्यूज गैदर कैसे की जाती है? एक रिपोर्टर को अगर खबर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में ही हमें अगर किसी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी असाइनमेंट के लिए खबर चाहिए, तो एज अ रिपोर्टर हमें किस तरह न्यूज को गैदर करना होगा?
2: जिसमें दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है इवेंट्स रिपोर्टिंग की, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया, बाज़ुकात बल्कि हर दफा होता है कि चैनल के अंदर रात को 12 बजे तक या 1 बजे तक मुख्तलिफ शहरों से डिफरेंट डे प्लान आ रहे होते हैं, मतलब मुल्तान के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर जो अगले दिन एक्टिविटीज होनी है वो मीडिया को पहले इन्फॉर्म कर दी जाती हैं, जो शेड्यूल्ड एक्टिविटीज हैं, जिस तरह किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी ने कोई कोई इवेंट होना है किसी होटल में, कोई मैच है, वो ऑलरेडी पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि मीडिया वहाँ पहुँच के कवर कर ले। तो ये डे प्लान के अंदर जो इवेंट शेड्यूल्ड हैं उनकी एक पूरी लिस्ट आ जाती है वो अप्रूवल के लिए। उसके अलावा जो रिपोर्टर खुद करना चाह रहा है, दूसरी ऑप्शन में, लेट्स सपोज रिपोर्टर ने जू के अंदर एक्टिविटी कवर करनी है, या उसने कौमी असम्बली का इजलास कवर करना है, या उसने सूबाई असम्बली का इजलास कवर करना है, या उसने किसी एक इंतहाई लो लाइंग इलाके में टूटी हुई गलियों की कवरेज करनी है जहाँ पे लोग मसाइल का शिकार हैं, तो वो अपना आइडिया डालेगा। आइडिया पिच करेगा, वो भी डे प्लान का हिस्सा होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि आपको असाइन किए जाते हैं न्यूज रूम की तरफ से। लेट्स सपोज रिपोर्टर खुद से कुछ नहीं लेके आ रहा, फिर न्यूज रूम खुद असाइन करेगा, यार आजकल लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार बजट का सीजन आ रहा है तो बजट के लिए हमें लोगों की वॉक्स पॉप्स चाहिए कि लोग महंगाई से कितना तंग हैं, तो यहाँ से फिर आप असाइन करेंगे या फलाने मुल्तान से, लाहौर से, कराची से महंगाई के ऊपर लोगों से वॉक्स पॉप्स करो, उनसे कमेंट्स लेके आओ कि वो क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये वो तीन चार जो शेड्यूल्ड इवेंट ऑलरेडी आते हैं जो रिपोर्टर एक्टिवली करता है, तीसरा जो न्यूज रूम उन्हें साइन करता है, तो इस तरह वो खबरें सारी एक एक लिस्ट आ जाती है, फिर उस खबरों की अप्रूवल जो कमेंट अथॉरिटी है वो देती है, देन अगले दिन वो रिपोर्टर अपना अपनी असाइनमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ कोई इसके अलावा भी एक खबरों का सोर्स है, अचानक कोई हादसा हो गया कि बम ब्लास्ट हो गया, फिर फौरन जो टीमें हैं वो बुलाई जाती है वहां पर पहुंच जाती है, या कोई रिपोर्टर फर्दर एक स्टोरी पे काम कर रहा है पिछले चार दिन से, उस पर काम करता रहेगा, फिर वो उसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी। तो डिफरेंट मल्टीपल मीन्स हैं, कुछ सोर्सेज आए हैं, कुछ आपके पास मॉनिटरिंग के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज की फीड आ रही होती है, बाकी अदर न्यूज़ चैनल से चीज़ें आ रही होती हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, टीवी चैनल्स हैं, प्रेस रिलीज हैं, हैंड आउट्स आपको बताते रहते हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन गेट कीपिंग आपने करनी है, फिल्ट्रेशन आपने करनी है, कौन सी खबर आप समझते हैं कि एडिटोरियली ये खबर सबसे बेस्ट है, ये चलनी चाहिए, देन पिक एंड चूज आप खुद कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत खूब और बहुत बेहतरीन अंदाज से सर आपने समझा दिया कि खबर को किस तरह लेना है। अगर बतौर स्टूडेंट भी आपको चाहिए तो आप खुद बना सकते हैं खबर, आप ढूंढ सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरी खुद जनरेट कर सकते हैं। तो सर सहाफियों का दूसरा घर कहा जाता है प्रेस क्लब को, तो प्रेस क्लब की क्या अहमियत होती है मीडिया के अंदर?
2: देखिए प्रेस क्लब एक कम्युनिटी है जो कि जितने भी साफी हैं वो वहाँ एक 9 to 5 जॉब से या जो रिपोर्टर्स हैं जो फील्ड से थोड़ा सा टेंस माहौल में जब काम करते हैं तो बहुत ही प्रेशर वाला काम होता है, तो वहाँ पे उनको एंटरटेन किया जाता है, वहाँ बैठ के एक तो वहाँ पे नेटवर्किंग डेवलप होती है, एक दूसरे के हालातों वाकयात का पता चलता है, वहाँ पे खबरें भी शेयर हो रही होती हैं, वहाँ पे वो कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, वहाँ पे लेट्स स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, बिलियर्ड खेलते हैं, वहाँ पे जिम है वो जिम करते हैं, वहाँ पे खाना चाना खाते हैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर और एक रिलैक्स होते हैं, वहाँ पे एक नेटवर्किंग भी है, शेयरिंग भी है, फैसिलिटेशन भी है, और वहाँ पे क्लब एक चूंकि क्लब को सब्सिडाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे साफियों को फिर एक बहुत एक बजट के साथ उनको एक फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो साफी जो है लाहौर के जो साफी हैं वहाँ पे मिल बैठ कर एक थोड़ा सा एक अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके,
1: अच्छा कर सके और खबरें जो है बड़े आसानी तरीके से इंजॉय करते करते जो है वो शेयर कर सके। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड के अंदर जो है आपको रिलैक्स होना, फिर क्योंकि एक ये तो फील्ड भी कुछ इस तरह की है कि आपको हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है मीडिया के अंदर। और सर आखिर पे हमें एक पैगाम दीजिएगा लाजमी आजकल के नौजवान नस्ल को कि जो मीडिया है उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोगों के पास जो है वो अप्रोच तो आ गई मीडिया की, अब इस्तेमाल किस तरह करना है उसका?
2: देखें मीडिया के अंदर जो है ना इस्तेमाल किस तरह, मीडिया का यूज बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। देखें एक तो हम मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, रैंडमली हमारे पास मोबाइल फोन है, हम फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, हम टिकटॉक पे हैं फीड स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं फीड अपनी जो फीड है स्क्रॉल किए जा रहे हैं, इस तरह फेसबुक ट्विटर के ऊपर हम अनइंटेंशनली हम जो कंटेंट हमारे सामने आ रहा है जो एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है हमने क्या देखना है, हमारी उस एंगेजमेंट हैबिट्स को देखते हुए हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए वो चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये टाइम जाया करने वाली बात है, ये डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आपने क्या देखना है, इट्स यू टू डिसाइड कि कौन सा कॉन्टेंट कंज्यूम करना है, एवरी कॉन्टेंट इज नॉट वर्थ ऑफ कंजप्शन। इसके लिए सेकेंड स्टेप के ऊपर देखिए मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि मीडिया का जो यूज़ है, इसमें मैं बात करूँ मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो लोग बैठे हैं वो प्रोफेशनल्स हैं।
1: एग्जैक्टली
2: वहाँ से आप जो न्यूज़ देख रहे हैं उनमें फेक न्यूज़ के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं,
1: ऐसे ही है।
2: क्योंकि वो अथेंटिक खबर होती है विद वैलिड रिसोर्सेज के साथ, प्रॉपर एट्रीब्यूशन के साथ, वो फिल्टर होके डेस्क से, रिपोर्टर से, फिर वो बहुत सारे मल्टीपल गेट कीपर्स हैं, तब वो खबर स्क्रीन तक पहुंचती है। नो डाउट कि इसमें बहुत सारा सेंसरशिप भी आ जाता है, कंट्रोल भी आ जाता है, लेकिन वो कुछ केसेस में जो कि यूं समझ लें कि हार्ड न्यूज के केसेस हैं,
1: पॉलिटिकल न्यूज के केसेस
2: हैं, लेकिन जो आप जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पॉलिटिकल कंटेंट की थोड़ी सी इसमें एग्जेम्पशन देता हूं, बहुत सारे केसेस के अंदर सियासी जो कंटेंट है उसको हम न्यूट्रल नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा बिकॉज दिस इज एन एकेडमिक रेडियो नॉट अ मेनस्ट्रीम न्यूज चैनल। तो लेकिन यह कि जो अदर जो हमारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज हैं, सोशल इश्यूज हैं, बाकी कल्चरल इश्यूज हैं, बाकी और जो लोगों के इश्यूज हैं, लेट्स सपोज किसी की गली नहीं बन रही, गली में पानी खड़ा, गटर बंद है, तो मीडिया जो कवर कर रहा है उसकी गली को, लोगों के तासुरात दे रहा है, वो रियलिटी को
1: पब्लिक
2: ओपिनियन को दे रहा है। तो वहां पे, यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स से खबर निकल के आती है। वहां पे एथिक्स का ख्याल रखा जाता है, जर्नलिज्म के एथिक्स का, लेट्स ब्लड नहीं दिखाना किसी का, किसी की कंसेंट के बगैर, किसी का चेहरा नहीं दिखाना, किसी को आपने बगैर कंसेंट के वो ऐसी बात नहीं करनी जो उसने मना किया हो कि ऑन रिकॉर्ड लाने के ऊपर। तो यहाँ पे फिल्टर्स के साथ, एथिक्स के साथ कंटेंट को फिल्टर करके दिखाया जाता है ताकि ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। आज भी ऑथेंटिक कंटेंट जितना भी है वो सिर्फ मेनस्ट्रीम मीडिया के ऊपर ही है। अखबारात जो है वो खबर जो पब्लिश होती है, अगर आपको लगता है फेक है, आप चैलेंज कर सकते हैं उसको। कैमरा बैठा हुआ है, टीवी के लिए कैमरा बैठा हुआ है, अखबार के लिए रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, ठीक है। तो जो भी चीज चलेगी, अगर लेट्स सपोज फेक न्यूज चलती है, एथिक्स को बलाय ताक रख के किसी न्यूज मीडिया ने कोई चीज चलाई है, तो पैमरा बैठा हुआ है, रेगुलेशन बॉडीज बैठी हुई है, वो उनको काउंटर करेंगी, ऑडिट भी करेंगी, उनके करेक्टिव मेजर्स भी करेंगी और ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन व्हाट अबाउट सोशल मीडिया, यहाँ पे अनफिल्टर्ड कंटेंट आ रहा है, आप कुछ भी देख सकते हैं, कंटेंट सही है गलत है, सोर्स ठीक है गलत है, फेक है, एज जनरेटेड है, प्रोपेगेंडा है, फैब्रिकेटेड है, यू डोंट नो। उसके लिए इफ यू डोंट हैव प्रॉपर मीडिया लिटरेसी स्किल्स, देन आप उस कंटेंट को जो कंज्यूम करें उसको आप सच मानना स्टार्ट कर देंगे, और जब आप एक चीज को सच मानना स्टार्ट करेंगे फिर वैसी झूठी चीजें आप तक आना शुरू हो जाएंगी, फिर आप एको चैम्बर का शिकार हो जाएंगे। आप कहेंगे जो मैं सोचता हूँ वही चीज सही है और वही चीज मेरे सामने आने चाहिए,
1: बहुत को
2: इनकी जो काउंटरिंग जो जो जो काउंटर आर्गुमेंट है जो कि अदर साइड ऑफ द कॉइन है, आप उसको सुनना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए फिर आप एक एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच का शिकार हो जाएंगे। तो न्यूज चैनल्स के अंदर क्या होता है कि वहां पे आपको फिल्टर्ड कंटेंट मिलता है जो प्रोफेशनल्स उस कंटेंट को तैयार करते हैं और प्रोफेशनल्स के थ्रू ही आप तक कंटेंट पहुंचता है। तो जो भी मेनस्ट्रीम मीडिया का कंटेंट है रिगार्डिंग नेशनल इश्यूज इंटरनेशनल इश्यूज आज भी वही ऑथेंटिक है और वही चीज ही आपको देखनी चाहिए। आप देखिए जितना भी आप मीडिया देखते हैं, अल जजीरा है, सीएनएन बीबीसी है, या इवन का डॉन है, पाकिस्तान का जियो है, एक्सप्रेस है, दुनिया है, इन तमाम मीडिया के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस हैं। अगर वो चीज गलत चलाएंगे देन दे हैव टू आंसर। सो मीडिया के यूज करने के हवाले से आपने विजिलेंट रहना है और ऑथेंटिक खबरें आज भी मेनस्ट्रीम मीडिया तक ही महदूद हैं, उन्हीं को लिफ्ट करता है सोशल मीडिया। अगर कोई आपको, हाँ हो सकता है कि बहुत सारी खबरें जो मेनस्ट्रीम मीडिया ना दे रहा हो लेकिन सोशल मीडिया पे आ रही हो वो सही भी हो, ऐसा हो भी होता भी
1: ऐसा
2: है, सेंसर होता है, वहां से देखते हैं
1: हम कई दफा हमारे सामने,
2: बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीजें वहां सेंसर होती है, यहाँ से आप देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक है, ये नहीं कहता वो सब गलत है, बहुत सी ठीक भी है, लेकिन उस वो ठीक कैसे है, यू नीड टू हैव मीडिया लिटरेसी स्किल्स टू क्रिटिकली वैल्यूएट द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग।
1: बहुत खूब, बहुत खूब सर, आपने तो दरिया को कूजे में जो है वो बंद कर दिया और बहुत बेहतरीन अंदाज के साथ जो है हमें बता दिया है कि हर चीज़ आपके हाथ में है, मीडिया आपके हाथ में है, तो इस्तेमाल उसका किस तरह करना है, और किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में आपको अवेयर होना ज़रूरी है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपके पास मोबाइल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो हर चीज़ को जो है आपको जाँच पड़ताल करके फिर जाके ऑन एयर करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया, और उम्मीद करता हूँ सामईन आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आपको यहाँ से पता लगा होगा कि मीडिया किस तरह काम करता है और कौन कौन सी इम्पैक्ट्स होते हैं मीडिया के। तो आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Sufi sings Ruh, that which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं? जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab. University of Central.

0: न्यूज। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया
1: कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहीं

सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर पाको हिंद में दीन इस्लाम के फैलाने में जो किरदार औलिया कराम ने अंजाम दिया वो नाकाबिले फरामोश है। इन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जो कि 1103 हिजरी 1291 को पांडू के जिला कसूर के एक सैयद घराने में पैदा हुए। इनके वालिद हजरत सखी मोहम्मद दरवेश कूच गिलानिया से तरके वतन करके पांडू आ गए और यहाँ दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू किया। आपका सिलसिला नसब हजरत खास पाक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। हजरत सैयद अब्दुल मारूफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मर्द हकानी की इब्तदाई तालीम

0: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
3: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 90.

0: And now, you are gonna listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अहमद रज़ा। मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन फैकल्टी आर में आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर आतिफ अशरफ साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज के इस प्रोग्राम में सर से हम बात करेंगे कि सहाफ़त क्या होती है, जर्नलिज्म बेसिकली है क्या, और बहुत वसी तजर्बा रखते हैं सर मीडिया के अंदर और उन सर से जानते हैं कि सर सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि जर्नलिज्म क्या होती है, सहाफ़त कहते किसे हैं।
2: जी बहुत शुक्रिया हमज़ा। जर्नलिज्म या सहाफ़त जो है बेसिकली एक पब्लिक सर्विस है और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मुआशरे में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा होने से पहले पहले विसल ब्लो की जाए, ढोल बजाया जाए और पॉलिसी मेकर्स को जो आपके जो मक्तदरा है जो कि आपकी स्टेट के फैसले करती है उस तक बात पहुंचाई जाए, आवाम की बात पहुंचाई जाए। और बेसिकली जर्नलिज्म जो है, सहाफत जो है, एक पुल का काम करती है आवाम और हुकूमत के दरमियान, ताकि ऐसा कोई मिसहैप, ऐसा कोई हादसा जो एक सहाफी समझता है कि हो सकता है, उस हादसे से पहले पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके उसको बचाया जा सके, ऑडिट किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी की जा सके और जो मुआशरे में गलत चीजें हो रही हैं, स्टेट के अंदर इदारों में हो रही हैं, माशरती लेवल पे हो रही हैं, समाजी लेवल पे हो रही हैं, उनको हाईलाइट किया जाए और उनके तदारुक के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। तो सहाफत एक अजीम शोबा है जिसका मकसद ही एक, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं ये पैगंबरी शोबा है,
1: बिल्कुल इसी तरह सुना हुआ,
2: जिस तरह आप तबलीग करते हैं, एक अच्छे काम की तरफ लोगों को लेके आते हैं, इसी तरह आपने मोबिलाइज करना है, अवेयर करना है, एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है मैसेज को और उन मैसेज की जो आवाज़ है, जो खलके जो कहते हैं ना कि जो आवाज़ खल्क है, उसको आपने पहुँचाना है मुक्तदरा तक, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के, उनके अपने प्रॉब्लम्स, उनको एड्रेस किया जा सके।
1: बिल्कुल, जो अपनी आवाज़ खुद नहीं बन सकते उनकी आवाज़ बनने का नाम है सहाफ़त मीडिया के अंदर। और सर आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट शायद नहीं ले रही मीडिया में, या शायद कहती हैं कि इसका स्कोप नहीं है, या आप इस चीज़ को एलैबोरेट कीजिएगा कि कितना स्कोप है और आजकल के नौजवान को अवेयर होना, इन्फॉर्म होना कितना ज़रूरी है मीडिया से खास तौर पे।
2: देखिए जर्नलिज्म जो है ना बेसिकली ये सिर्फ हालात हाजरा की रिपोर्ट करना नहीं है, जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन।

0: को पहले उनको एक्सप्लोर करें, फिर बात की गहराई तक पहुंचें, फिर उससे इन्वेस्टिगेट करें जो आपको जहां जहां से कोई गैप नज़र आते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन के ये गैप्स हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए डिफरेंट लोगों के पास, स्टेक होल्डर्स के पास जाएं, जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके वर्जन्स लें, फिर आप एक कंप्लीट पिक्चर के साथ आएं। तो जब आप वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो होगी जर्नलिज्म। तो बेसिकली इसका जो स्कोप है ना जर्नलिज्म का, ये सिर्फ अखबार और टीवी के हद तक नहीं है। आजकल जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर नहीं है जो सब चला रहे हैं, जो सबसे बड़ी खबर वही खबर है जो सिर्फ आपने एक्सप्लोर की है, वो आपकी एक्सक्लूसिव खबर है, वो आपका स्कूप है, इसे बाकी लोग, बाकी दुनिया नहीं जानती। और इसको अनकवर करना, रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना, ये वो तमाम स्किल्स हैं जो एक जर्नलिस्ट को रिक्वायर्ड है। अगर वो उस चीज को अनकवर करता है जिससे एक बहुत बड़ा एक मुआशरे का छुपा हुआ पहलू सामने आता है और उससे मुआशरे में बेहतरी आ सकती है, तो ये जर्नलिज्म। मिसाल है, आपने सुना पनामा लीक्स एक
1: स्कैंडल था, बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है, ऑफशोर कंपनीज निकली थी, तो किन्होंने किया था ये काम? ये बहुत सारे ग्लोबल जर्नलिस्ट ने मिलके, एक कंसोर्शियम ने मिलके एक बहुत बड़ा मेगा डेटा को एक्सप्लोर किया। उस डेटा से फिर उन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली वो ये थी कि बहुत सारे दुनिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्टेट्समैन हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी ऑफशोर कंपनीज हैं पनामा में, ताकि वो अपना टैक्स बचा सके। इस तरह बहुत सारे हमारे और भी बड़े बड़े स्कैंडल जो एक्सपोज किए हैं जर्नलिज्म बहुत साफियों ने, तो वो बड़े बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं। तो खबर एक ही होती है, जब वो खबर निकलती है पूरी दुनिया उसको पीटती है। तो उस वो वाला जर्नलिज्म का जो स्कोप है वो आज भी बरकरार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम इवेंट्स की रिपोर्टिंग के पीछे पड़ गए हैं। हम जस्ट उसने कहा उसने ये कह दिया, ये वहां पे लाइव चल रहा है, वो दिखा दिया। इस इज जर्नलिज्म, बट इट इज नॉट प्योर जर्नलिज्म। प्योर जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। तो जिसको वो स्किल आती है उसको वही असल जर्नलिस्ट है, और वही उसके लिए भी मुसीबतें भी आएंगी डेफिनेटली। जब आप किसी करप्शन को एक्सपोज करेंगे, जब आप पावरफुल इलीट का गिरेबान पकड़ेंगे, तो भी डेफिनेटली प्रेशर आएगा, आपको प्रेशर भी उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वही असल साफी है जो प्रेशर में रहकर काम करता है और जो सच बोलता है, ना कि कंप्रोमाइज होके अपनी पार्टी पोजिशन क्लियर कर ले और पार्टी का एक नुमाइंदा बन के रह जाए, वो जर्नलिज्म नहीं है। Everything what is being reported is not journalism. ये public relationing है। We are not supposed to be a PROs. जर्नलिस्ट PRO नहीं है। किसी सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर लेनी, उसकी स्टेटमेंट चला देनी, ये जस्ट एक पब्लिक रिलेशनिंग है। आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो कि जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म है कि आपने गिरेबान पकड़ना है उन लोगों का जो कि करप्शन कर रहे हैं, जो इस मुल्क के साथ, इस मुआशरे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना और मजलूम की आवाज उठाना और सच का साथ देना, ये जर्नलिज्म है।
1: ये ड्यूटीज है जर्नलिज्म की। और बहुत खूब सर आपने समझाया कि जर्नलिज्म क्या होती है, ना सिर्फ एक खबर को लेके उससे प्रेजेंट कर देना खबर, वो नहीं होती, बल्कि फैक्ट चेकिंग, रिसर्च और उसमें गहराई में जाके काउंटर, अपने आप के साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट करके फिर एक रिजल्ट निकाल के उसे रिप्रेजेंट करना, वो खबर होती है। सर थोड़ा सा मीडिया के हम अंदर चैनल्स में जरा थोड़ा सा जाते हैं, तो टिकर्स वगैरह, क्योंकि आजकल नौजवान नस्ल को अवेयर करना बहुत जरूरी होता है कि टिकर्स क्या हैं, क्योंकि जो हमारे सामईन हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि टिकर्स क्या हैं, किस तरह काम करते हैं। चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। और आज हम बात कर रहे हैं कि मीडिया लिटरेसी क्या है, मीडिया किस तरह काम करता है और किस तरह मीडिया में हमें अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। और इसी पे बात कर रहे थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर आतिफ अशरफ साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि एक मीडिया स्टूडेंट को किस सेमेस्टर में किस टाइम मीडिया की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या 7वें सेमेस्टर के बाद, 8वें के बाद या फिर पहले?
2: देखिए बात यह है कि जिसका पैशन जर्नलिज्म है और जो करना चाहता है ना, वो इस डिग्री स्टार्ट करने से पहले भी स्टार्ट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको किसी इदारे से मुंसलिक होना ही लाजमी है। इसकी प्रैक्टिस आप आजकल के दौर में आराम से घर बैठ कर स्टार्ट कर सकते हैं।
1: सही।
2: सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बात करता हूँ स्टूडेंट से कि जर्नलिज्म बेसिकली क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास एक नोज फॉर न्यूज होनी चाहिए। आपके पास वो स्मेल आपको करनी आनी चाहिए कि खबर असल में है क्या
1: है क्या।
2: जब आपने खबर को स्मेल कर लिया कि ये आइडिया ये खबर हो सकती है, तो उसके बाद सेकंड स्किल है कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें, उसको एक्सप्लोर करें कि यार आइडिया जो मुझे आया कि वाकया कि इस आइडिया के ऊपर पहले कितना काम हुआ है और ये आइडिया है क्या, उसके बैक स्टोरी समझें। बैक स्टोरी होती है कि उसका कॉन्टेक्स्ट देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, जो जो उस आइडिया के साथ मुंसलिक स्टेक होल्डर्स हैं उनको स्टडी करें। ठीक है, जब आप स्टडी कर लेंगे देन आपका आइडिया रिफाइन होगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि अगला स्टेप है आपने न्यूज हंट स्टार्ट करना है। आप मुतलका रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के पास जाएं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स तलाश करें, उनके इंटरव्यूज करें, डिग आउट करें, फैक्ट्स को डिग आउट
1: निकालना शुरू,
2: एट्रीब्यूट करें जो मैं फैक्ट्स देख रहा हूं कि वैलिड है, मुस्तनद है कि नहीं है। ये करने के बाद जब आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस आ जाएगा देन उसका अगला स्टेप है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपके पास राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, उसके लिए आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए।
1: उर्दू वो क्या,
2: ठीक है, उर्दू कर लें, इंग्लिश कर लें, लेकिन मेनली मीडिया उर्दू में, लिहाजा उर्दू में मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है कि आप उर्दू के अंदर लिखना सीखें, जर्नलिस्टिक राइटिंग सीखें। उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो आप अखबारात पढ़ें। जब आप रीड करेंगे आपको लिखना भी आ जाएगा। इस तरह जब आपने एंकर बनना है, टीवी के लिए बोलना है, तो आप एंकर्स को सुने, रिपोर्टर को सुने, आपको बोलना आ जाएगा। तो लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो अखबार के अंदर खबरें पड़ी लिखी हुई हैं, उन खबरों को पढ़ें, देखें स्ट्रक्चर क्या है, लीड क्या होती है, उसकी सुपर लीड क्या होती है, इंट्रो कैसे लिखा जाता है, 5W1H क्या होते हैं, एट्रीब्यूशन क्या होती हैं, खबर बैलेंस कैसे किया जाता है, खबर का जो नेट ग्राफ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो तमाम खबर का स्ट्रक्चर है वो आप आराम से अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं, यूट्यूब के ऊपर भी, एडेक्स के ऊपर भी डिफरेंट कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल जो जर्नलिज्म है वो यही है कि आपने जब आपके पास एक खबर स्मेल करते हैं देन रिसर्च स्किल्स आपकी अपनी है, आपको हेल्प आउट करेंगे बहुत सारे टूल्स, एआई के टूल्स हैं जो आपको रिसर्च करने में हेल्प आउट करेंगे, डिजिटल मीडिया के बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको खबर के सोर्स तक लेके जाएंगे, डाटा जर्नलिज्म के टूल्स मौजूद हैं, ओपन सोर्स डाटा अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जब आप वो कर लेंगे तो रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ जब आपको लैंग्वेज की स्किल्स, ये ओवरनाइट नहीं आएंगे आपको ना, ये लिख के आएंगे। लिखने के बाद टाइपिंग भी सीखें, उर्दू टाइपिंग, बिकॉज आजकल जर्नलिज्म सारी कंप्यूटर्स के ऊपर हो रही है। जब अगर आपको उर्दू टाइपिंग नहीं आती तो आप मिसफिट हैं। अगर आप रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं, एंकर हैं, उर्दू टाइपिंग इज अ मस्ट, बिकॉज जब आप टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करके ही आपका प्रॉम्प्टर बनेगा, टाइपिंग से ही पैकेज का स्क्रिप्ट बनेगा, टाइपिंग से ही आपका इंट्रो बनेगा, तो टाइपिंग के बगैर हैंड रिटन कोई चीज नहीं,
1: टाइपिंग बेस है।
2: तो टाइपिंग थोड़ा सा सीखें, फिर उसके अलावा आप डिफरेंट टूल्स देखें, मसलन डिजाइनिंग के टूल्स हैं, एडिटिंग के टूल्स हैं, उनको देखें, कैमरा कैसे काम करता है, कैमरे के फ्रेम क्या होते हैं, कंपोजिशन क्या होती है, स्टोरी को रिकॉर्ड कैसे करना है, इंटरव्यू रिकॉर्ड कैसे करना है। ये मल्टीपल स्किल्स है जो कि आपको आराम से घर बैठ के सीख लेनी। जब आपके पास स्किल्स आ जाएंगी उसके बाद इफ यू हैव स्किल्स तो छोड़ दें, अगर आपको कोई मीडिया उस चांस नहीं भी देता, जस्ट स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, स्टार्ट योर फेसबुक पेज, स्टार्ट योर इंस्टाग्राम पेज, वहां पे कंटेंट डालते रहे आपकी डिग्री मुकम्मल होने से पहले। इवन के मैं कहता हूँ आई कैन चैलेंज, अगर आप कंसिस्टेंट रहे, आई कैन चैलेंज विद इन 1 ईयर यू विल बी अर्निंग एज मच एज यू कुड हैव इमेजिन्ड। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एक फेस आपका रजिस्टर हो जाएगा ऑन सोशल मीडिया, आपके पेज, आपका यूट्यूब चैनल अगर वो रजिस्टर हो गया, उसकी शिनाख्त बन गई, देन आफ्टर वंस यू डिग्री इज कम्प्लीटेड आफ्टर फोर ईयर, तो चार साल से पहले पहले आपको बहुत सारे क्लाइंट्स अप्रोच कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
2: बहुत सारे चैनल्स अप्रोच कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्किल्स, और स्किल आपकी आपने खुद डिसाइड करनी है, आपकी रिपोर्टिंग स्किल्स हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आपकी ब्लॉगिंग की स्किल्स हैं, आपकी ए की स्किल्स हैं, आपकी कंटेंट क्रिएशन की स्किल्स हैं, इट्स ऑल अप टू यू। हमारे दौर में क्या था, हमें मौका चाहिए था, कोई मौका दे, चांस दे,
1: मौका दे,
2: आजकल मौके सामने बैठे हुए हैं,
1: मौके तो आपको
2: वो स्किल चाहिए आपको, वो स्किल आपको चाहिए, स्किल है उसको एग्जीबिट करें, स्टार्ट करें, अल्लाह मालिक आपको जो है ना वो बॉस सारा, और बात यह कि काम खुद सिखाएगा मुझे कैसे करना है। सबसे बड़ा बॉस काम खुद होता है जो आप कर रहे होते हैं, और आप फिर नेटवर्किंग डेवलप करें, लाइक माइंडेड लोगों के पास बैठे सीखें, टीचर से सीखें, प्रोफेशनल से सीखें, पूछिए मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो इस तरह आपको उनके साथ अटैच होंगे, नेटवर्किंग से बहुत आपका फायदा होगा, आपको मौके मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको काम दे सकते हैं, तो ये वो स्किल है, अगर आपके पास नियत है, स्किल है, अगर आप करना चाहते हैं तो जस्ट यू नीड अ मोबाइल फोन, यू नीड अ लैपटॉप एंड दैट्स इट। आपकी मुकम्मल प्रोडक्शन हाउस आपका मोबाइल फोन है, स्टार्ट इट एंड डू व्हाटएवर यू वांट इन जर्नलिज्म।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। और अगर आपका टारगेट सेट है, आपने पैशनेट है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सितारों पे कमंद भी डाल सकते हैं, आप इकबाल के शाहीन भी बन सकते हैं, तो टारगेट आपका होना बहुत जरूरी है। चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। और आज के प्रोग्राम में हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर आतिफ अशरफ साहब ने ज्वाइन किया है, और उनसे हम बात कर रहे थे कि मीडिया चैनल के अंदर जो है वो किस तरह के मामलात होते हैं, टिकर्स किस तरह चलते हैं, क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग का सिस्टम क्या होता है। तो सर बताइएगा कि टिकर्स जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरह चलाए जाते हैं और क्या सिस्टम होता है उसका।
2: नहीं, जिस तरह होता है ना कि कोई क्राइम होता है थाने में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR होती है।
1: yes.
2: तो समझ लगे खबर का पहला स्टेज टिकर है।
1: hmm.
2: टिकर क्या होता है कि टिकर के लिए, चूंकि टीवी इज अ ऑडियो विजुअल मीडियम, वहां पे आपने एक खबर को प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रॉम्प्टर चाहिए, उसकी स्क्रिप्टिंग चाहिए, उस कैमरा चाहिए, फिर उसकी ट्रांसमिशन चाहिए, एक एंकर चाहिए, एक पूरा एक आपको एक PCR चाहिए, तब जाके प्रॉम्प्टर के साथ फिर विजुअल्स भी चाहिए, एंकर की आवाज जाएगी, फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन टिकर क्या है, टिकर जस्ट एक टेक्स्ट है जो कि टीवी के बॉटम के ऊपर, जैसे खबर आती है आप उसको टाइप करते हैं और वो टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। जस्ट एक इनके फौरन ना इसमें किसी एंकर की जरूरत है, ना ऑडियो की, ना वीडियो की, जस्ट एक टेक्स्ट के फॉर्म में आप खबर ब्रेक कर देते हैं। अक्सर आपको जब खबर ब्रेक होती है ना, सबसे पहले जब टिकर की फॉर्म में इसको टेक्स्ट आ रहा
1: होता है, बिल्कुल,
2: उसके बाद वो टिकर अपडेट होते रहते हैं, उसके बाद फिर 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद या 3 मिनट बाद फिर वो टिकर एंकर के पास जाते हैं, एंकर रेडी होती है, टिकर को पढ़ती है या पढ़ता है, फिर एक पूरा सिस्टम के साथ फिर वो ब्रेक होती है, फिर वो ब्रेकिंग न्यूज चलती है, फिर वो साथ रिपोर्टर का पेपर चल रहा होता है, फिर वो उसके ऊपर मजीद डिटेल दे रहा होता है। तो टिकर बेसिकली वो टेक्स्ट की फॉर्म में एक ऐसा फॉर्मेट है जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के तौर के ऊपर टीवी की स्क्रीन के ऊपर आप डिस्प्ले करते हैं।
1: मीडिया की जो FIR है वो टिकर है आपके मुताबिक। और सर टेलीप्रॉम्प्टर की आपने बात की, टेलीप्रॉम्प्टर तो बहुत जरूरी होता है, वो कैब और आपकी बहुत ज्यादा चीजें जो है वो उसमें क्लियर कर देता है, समझ आ रही होती है, तो टेलीप्रॉम्प्टर क्या है ये भी बताना जरूरी है।
2: देखें, अक्सर हम छोटे थे ना, जब हम टीवी देखते थे हमें बड़ा ताज्जुब होता था कि ये एंकर सारी खबरें जुबानी कैसे याद कर लेती है।
1: ऐसे ही,
2: लेकिन बाद में अंदाजा हुआ यार ये कोई भी एंकर खबर जुबानी नहीं पढ़ता, बल्कि सामने लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है और जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है। कोई भी खबर जो एंकर आपको पढ़ता हुआ नजर आ रहा है या आ रही है, वो बेसिकली न्यूज रूम ने उस खबर को प्रॉपरली जर्नलिस्टिक राइटिंग में, स्क्रिप्ट को प्रॉपर जर्नलिस्टिक राइटिंग में लिखा हुआ है। जब वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है फिर उसको एडिट किया जाता है, कुछ डेस्क के ऊपर लोग कॉपी, जिनको कॉपी एडिटर्स बोलते हैं, रिपोर्टर खबर डालता है, फाइल करता है, देन कॉपी एडिटर्स उस खबर को एडिट करते हैं। एडिट से मुराद यह है कि इस तरह से एडिट करते हैं कि वो उसका स्क्रिप्ट कन्वर्सेशनल
1: हो जाता है,
2: हो जाए, ताकि एंकर को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज राइटिंग की लैंग्वेज डिफरेंट है और टीवी की लैंग्वेज डिफरेंट
1: है। यस,
2: जिस तरह उस तरह से लिखा जाता है स्क्रिप्ट प्रॉम्प्टर के लिए, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं कन्वर्सेशनल स्टाइल के अंदर, तो जब उस स्टाइल में स्क्रिप्ट एडिट होगा फिर वो एंकर के सामने आएगा, फिर एंकर स्क्रोल करेगा, एंकर अपनी स्पीड के मुताबिक उस टेक्स्ट को थ्रू प्रॉम्प्टर पढ़ेगा और वो देख, प्रॉम्प्टर मेरा होगा लेकिन प्रॉम्प्टर के पीछे कैमरा लगा होगा, तो इस तरह फील आएगी जैसे वो खुद कैमरे में देख के पढ़ा और जुबानी पढ़ रहा है। और इसके लिए एंकर की भी बड़ी उसको एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है कि वो लगे ना कि वो रीडिंग कर रहा है,
1: रीडिंग कर रहा
2: है, उसके लिए प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि वो जब पढ़े तो लगे इस तरह के वो खुद नेचुरल वे में ऑर्गेनिकली पढ़ रहा है, ना कि ये रीड कर रहा है प्रॉम्प्टर से।
1: बिल्कुल, रीड नहीं कर रहा और डिलीवर जो कर रहा है वो अपने, यानी कि उसने सोचा हुआ है और वो आपको सिखा रहा है। और न्यूज लेते किस तरह है, क्योंकि हमने चलाने की भी बात कर ली, हमने FIR भी दे दी न्यूज की, न्यूज गैदर कैसे की जाती है, एक रिपोर्टर को अगर खबर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में ही हमें अगर किसी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी असाइनमेंट के लिए खबर चाहिए, तो एज अ रिपोर्टर हमें किस तरह न्यूज को गैदर करना होगा।
2: इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है इवेंट्स रिपोर्टिंग की, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया, बाज़ औक़ात बल्कि हर दफा होता है कि चैनल के अंदर रात को 12 बजे तक या 1 बजे तक मुख्तलिफ शहरों से डिफरेंट डे प्लान आ रहे होते हैं, मतलब मुल्तान के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर जो अगले दिन एक्टिविटीज होनी है वो मीडिया को पहले इन्फॉर्म कर दी जाती हैं, जो शेड्यूल्ड एक्टिविटीज हैं, जिस तरह किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी ने कोई कोई इवेंट होना है किसी होटल में, कोई मैच है, वो ऑलरेडी पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि मीडिया वहाँ पहुँच के कवर कर ले। तो ये डे प्लान के अंदर जो इवेंट शेड्यूल्ड हैं उनकी एक पूरी लिस्ट आ जाती है वो अप्रूवल के लिए। उसके अलावा जो रिपोर्टर खुद करना चाह रहा है, दूसरे ऑप्शन में, लेट्स सपोज रिपोर्टर ने जू के अंदर एक्टिविटी कवर करनी है, या उसने कौमी असम्बली का इजलास कवर करना है, या उसने सुबह असम्बली का इजलास कवर करना है, या उसने किसी एक इंतहाई लो लाइंग इलाके में टूटी हुई गलियों की कवरेज करनी है जहाँ पे लोग मसाइल का शिकार हैं, तो वो अपना आइडिया डालेगा, आइडिया पिच करेगा, वो भी डे प्लान का हिस्सा होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि आपको असाइन किए जाते हैं न्यूज रूम की तरफ से। लेट्स सपोज रिपोर्टर खुद से कुछ नहीं लेके आ रहा, फिर न्यूज रूम खुद असाइन करेगा। यार आजकल लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार बजट का सीजन आ रहा है, तो बजट के लिए हमें लोगों की वॉक्स पॉप्स चाहिए कि लोग महंगाई से कितना तंग हैं, तो यहाँ से फिर आप असाइन करेंगे या फलाने मुल्तान से, लाहौर से, कराची से महंगाई के ऊपर लोगों से वॉक्स पॉप्स करो, मीन उनसे कमेंट्स लेके आओ कि वो क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये वो तीन चार जो शेड्यूल्ड इवेंट ऑलरेडी आते हैं जो रिपोर्टर एक्टिवली करता है, तीसरा जो न्यूज रूम उन्हें साइन करता है, तो इस तरह वो खबरें सारी एक एक लिस्ट आ जाती है। फिर उस खबरों की अप्रूवल जो कमेंट अथॉरिटी है वो देती है, देन अगले दिन वो रिपोर्टर अपना अपनी असाइनमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। या कोई इसके अलावा भी एक खबरों का सोर्स है, अचानक कोई हादसा हो गया कि बम ब्लास्ट हो गया, फिर फौरन जो टीमें वो बुलाई जाती है वहां पर पहुंच जाती है, या कोई रिपोर्टर फर्दर एक स्टोरी पे काम कर रहा है पिछले चार दिन से, उस पर काम करता रहेगा, फिर वो उसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी। तो डिफरेंट मल्टीपल मींस हैं, कुछ सोर्सेज आए हैं, कुछ आपके पास मॉनिटरिंग के ऊपर बहुत सारी न्यूज एजेंसीज की फीड आ रही होती है, बाकी अदर न्यूज चैनल से चीजें आ रही होती हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, टीवी चैनल्स हैं, प्रेस रिलीज हैं, हैंड आउट्स आपके पास आते रहते हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। लेकिन गेट कीपिंग आपने करनी है, फिल्ट्रेशन आपने करनी है, कौन सी खबर आप समझते हैं कि एडिटोरियली ये खबर सबसे बेस्ट है, ये चलनी चाहिए, देन पिक एंड चूज आप खुद कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत खूब और बहुत बेहतरीन अंदाज से सर आपने समझा दिया कि खबर को किस तरह लेना है। अगर बतौर स्टूडेंट भी आपको चाहिए तो आप खुद बना सकते हैं खबर, आप ढूंढ सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरी खुद जनरेट कर सकते हैं। तो सर सहाफ़ियों का दूसरा घर कहा जाता है प्रेस क्लब को, तो प्रेस क्लब की क्या अहमियत होती है मीडिया के अंदर?
2: देखिए प्रेस क्लब एक कम्युनिटी है जो कि जितने भी साफ़ी हैं वो वहाँ एक 9 to 5 जॉब से या जो रिपोर्टर्स हैं जो फील्ड से थोड़ा सा टेंस माहौल में जब काम करते हैं तो बहुत ही प्रेशर वाला काम होता है, तो वहाँ पे उनको एंटरटेन किया जाता है वहाँ बैठ के। एक तो वहाँ पे नेटवर्किंग डेवलप होती है, एक दूसरे के हालातों वाकयात का पता चलता है, वहाँ पे खबरें भी शेयर हो रही होती हैं, वहाँ पे वो कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं, वहाँ पे लेट स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, बिलियर्ड खेलते हैं, वहाँ पे जिम है, वो जिम करते हैं, वहाँ पे खाना चाना खाते हैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर, और एक रिलैक्स होते हैं वहाँ पे। एक नेटवर्किंग भी है, शेयरिंग भी है, फैसिलिटेशन भी है, और वहाँ पे क्लब एक चूँकि क्लब को सब्सिडाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे साफियों को फिर एक बहुत एक बजट के साथ उनको एक फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो साफी जो है लाहौर के जो साफी हैं वहाँ पे मिल बैठ कर एक थोड़ा सा एक अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके,
1: अच्छा कर सके, और खबरें जो है बड़े आसानी तरीके से इंजॉय करते करते जो है वो शेयर कर सकें। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड के अंदर जो है आपको रिलैक्स होना, फिर क्योंकि एक ये तो फील्ड भी कुछ इस तरह की है कि आपको हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है मीडिया के अंदर। और सर आखिर पे हमें एक पैगाम दीजिएगा लाजमी आजकल के नौजवान नस्ल को कि जो मीडिया है उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोगों के पास जो है वो अप्रोच तो आ गई मीडिया की, अब इस्तेमाल किस तरह करना है उसका?
2: देखिए मीडिया के अंदर जो है ना इस्तेमाल किस तरह, मीडिया का यूज बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये क्वेश्चन किया है। देखिए एक तो हम मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, रैंडमली हमारे पास मोबाइल फोन है, हम फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, हम टिकटॉक पे हैं फीड स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं फीड अपनी जो फीड है स्क्रॉल किए जा रहे हैं, इस तरह फेसबुक ट्विटर के ऊपर हम अनइंटेंशनली हम जो कंटेंट हमारे सामने आ रहा है जो एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है हमने क्या देखना है, हमारी उस एंगेजमेंट हैबिट्स को देखते हुए हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए वो चीज़ हमारे पास आ रही होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये टाइम जाया करने वाली बात है, ये डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आपने क्या देखना है, इट्स यू टू डिसाइड कि कौन सा कॉन्टेंट कंज्यूम करना है। एवरी कॉन्टेंट इज नॉट वर्थ ऑफ कंजप्शन। इसके लिए सेकेंड स्टेप के ऊपर देखिए मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि मीडिया का जो यूज़ है, इसमें मैं बात करूँ मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो लोग बैठे हैं वो प्रोफेशनल्स हैं।
1: एग्जैक्टली
2: वहाँ से आप जो न्यूज़ देख रहे हैं उनमें फेक न्यूज़ के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं,
1: सही है,
2: क्योंकि वो अथेंटिक खबर होती है विद वैलिड रिसोर्सेज के साथ, प्रॉपर एट्रीब्यूशन के साथ, वो फिल्टर होके डेस्क से, रिपोर्टर से, फिर वो बहुत सारे मल्टीपल गेट कीपर्स हैं, तब वो खबर स्क्रीन तक पहुंचती है। नो डाउट कि इसमें बहुत सारा सेंसरशिप भी आ जाता है, कंट्रोल भी आ जाता है, लेकिन वो कुछ केसेस में जो कि यूं समझ लें कि हार्ड न्यूज के केसेस हैं,
1: पॉलिटिकल न्यूज के केसेस
2: हैं, लेकिन जो आप जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पॉलिटिकल कंटेंट की थोड़ी सी इसमें एग्जेम्पशन देता हूँ, बहुत सारे केसेस के अंदर सियासी जो कंटेंट है उसको हम न्यूट्रल नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा बिकॉज दिस इज एन एकेडमिक रेडियो, नॉट अ मेनस्ट्रीम न्यूज चैनल। तो लेकिन यह कि जो अदर जो हमारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज हैं, सोशल इश्यूज हैं, बाकी कल्चरल इश्यूज हैं, बाकी और जो लोगों के इश्यूज हैं, लेट्स सपोज किसी की गली नहीं बन रही, गली में पानी खड़ा, गटर बंद है, तो मीडिया जो कवर कर रहा है उसकी गली को, लोगों के तासुरात दे रहा है, वो रियलिटी को
1: पब्लिक
2: ओपिनियन को दे रहा है। तो वहां पे यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर से खबर निकल के आती है, वहां पे एथिक्स का ख्याल रखा जाता है, जर्नलिज्म के एथिक्स का, लेट्स ब्लड नहीं दिखाना किसी का, किसी की कंसेंट के बगैर किसी का चेहरा नहीं दिखाना, किसी को आपने बगैर कंसेंट के वो ऐसी बात नहीं करनी जो उसने मना किया हो कि ऑन रिकॉर्ड लाने के ऊपर। तो यहाँ पे फिल्टर्स के साथ, एथिक्स के साथ कंटेंट को फिल्टर करके दिखाया जाता है ताकि ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। आज भी ऑथेंटिक कंटेंट जितना भी है वो सिर्फ मेनस्ट्रीम मीडिया के ऊपर ही है। अखबारात जो है वो खबर जो पब्लिश होती है अगर आपको लगता है फेक है आप चैलेंज कर सकते हैं उसको। कैमरा बैठा हुआ है टीवी के लिए, कैमरा बैठा हुआ है, अखबार के लिए रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, ठीक है। तो जो भी चीज चलेगी, अगर लेट्स सपोज फेक न्यूज चलती है, एथिक्स को बलाए ताक रख के किसी न्यूज मीडिया ने कोई चीज चलाई है, तो पैमरा बैठा हुआ है, रेगुलेशन बॉडीज बैठी हुई है, वो उनको काउंटर करेंगी, ऑडिट भी करेंगी, उनके करेक्टिव मेजर्स भी करेंगी और ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन व्हाट अबाउट सोशल मीडिया, यहाँ पे अनफिल्टर्ड कंटेंट आ रहा है, आप कुछ भी देख सकते हैं, कंटेंट सही है गलत है, सोर्स ठीक है गलत है, फेक है, एज जनरेटेड है, प्रोपेगेंडा है, फैब्रिकेटेड है, यू डोंट नो। उसके लिए इफ यू डोंट हैव प्रॉपर मीडिया लिटरेसी स्किल्स देन आप उस कंटेंट को जो कंज्यूम करें उसको आप सच मानना स्टार्ट कर देंगे,
1: मानना शुरू कर।
2: और जब आप एक चीज को सच मानना स्टार्ट करेंगे फिर वैसी झूठी चीजें आप तक आना शुरू हो जाएंगी, फिर आप एको चैम्बर का शिकार हो जाएंगे, आप कहेंगे जो मैं सोचता हूँ वही चीज सही है और वही चीज मेरे सामने आने चाहिए। इनकी जो काउंटरिंग जो जो जो काउंटर आर्गुमेंट है जो कि अदर साइड ऑफ द कॉइन है आप उसको सुनना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए फिर आप एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच का शिकार हो जाएंगे। तो न्यूज चैनल्स के अंदर क्या होता है कि वहां पे आपको फिल्टर्ड कॉन्टेंट मिलता है जो प्रोफेशनल्स उस कंटेंट को तैयार करते हैं और प्रोफेशनल्स के थ्रू ही आप तक कंटेंट पहुंचता है। तो जो भी मेनस्ट्रीम मीडिया का कंटेंट है रिगार्डिंग नेशनल इश्यूज इंटरनेशनल इश्यूज आज भी वही ऑथेंटिक है और वही चीज ही आपको देखनी चाहिए। आप देखिए जितना भी आप मीडिया देखते हैं, अल जजीरा है, सीएनएन बीबीसी है, या इवन का डॉन है, पाकिस्तान का जियो है, एक्सप्रेस है, दुनिया है, इन तमाम मीडिया के ऊपर चेक एंड बैलेंसेज हैं। अगर वो चीज गलत चलाएंगे देन दे हैव टू आंसर। सो मीडिया के यूज करने के हवाले से आपने विजिलेंट रहना है और ऑथेंटिक खबरें आज भी मेनस्ट्रीम मीडिया तक ही महदूद हैं, उन्हीं को लिफ्ट करता है सोशल मीडिया। अगर कोई आपको, हाँ हो सकता है कि बहुत सारी खबरें जो मेनस्ट्रीम मीडिया ना दे रहा हो लेकिन सोशल मीडिया पे आ रही हूँ वो सही भी हूँ, ऐसा हो भी होता भी
1: ऐसा
2: है, सेंसर होता है, वहां से देखते हैं
1: हम कई दफा हमारे सामने,
2: बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीजें वहां सेंसर होती है, यहाँ से आप देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक है, ये नहीं कहता वो सब गलत है, बहुत सी ठीक भी है, लेकिन उस वो ठीक कैसे है, यू नीड टू हैव मीडिया लिटरेसी स्किल्स To critically evaluate the content you are consuming.
1: बहुत खूब सर, आपने तो दरिया को कूजे में जो है वो बंद कर दिया और बहुत बेहतरीन अंदाज के साथ जो है हमें बता दिया है कि हर चीज़ आपके हाथ में है, मीडिया आपके हाथ में है, तो इस्तेमाल उसका किस तरह करना है और किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में आपको अवेयर होना ज़रूरी है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपके पास मोबाइल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो हर चीज़ को जो है आपको जाँच पड़ताल करके फिर जाके ऑन एयर करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया और उम्मीद करता हूँ सामईन आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आपको यहाँ से पता लगा होगा कि मीडिया किस तरह काम करता है और कौन कौन सी इम्पैक्ट्स होते हैं मीडिया के। तो आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: यही है मेरी पहली आशिकी।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।